हरिष्मान मास रुटी की उकी उकी बिली चक्षण दानी ते पेशी दर्जो राजा सिंह सब मातुरुवन आमीनु टेन